आवाज की दुनिया के दोस्तों और संगीत प्रेमियों, आज 30 अगस्त के महक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, सुखदेव जसवाल।

शैलेंद्र, जो एक समय फिल्मों में अपनी गीत अपनी कविताएं देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका विचार बदल गया, और अच्छा ही हुआ क्योंकि हमें उनके गीतों का आनंद लेने का मौका मिल गया। आज 2 घंटे के लिए शैलेंद्र जी के गीत हम श्रद्धांजलि देंगे मदर टेरेसा को, जिन्होंने बेघर बच्चों, बेघर लोगों और उन दुखियों की सेवा की जिनको कोई भी नहीं अपनाना चाहता था। हम श्रद्धांजलि देंगे शिवराम राजगुरु को, जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव के साथ देश की सेवा की और अपनी जान कुर्बान की। हम श्रद्धांजलि देंगे ध्यानचंद को, जिन्हें हॉकी का मैजिशियन कहा जाता है, क्योंकि उनकी हॉकी से उनके चाहे बिना बॉल अलग नहीं होती थी। आपकी फरमाइश पेश करेंगे महक 2RRR 88.5 FM पर। अपनी फरमाइश भेजने के लिए बहुत ही आसान है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02981 6 2777 9816 2777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं, 2RRR.org.au पे जाके लिसन ऑनलाइन प्ले बटन जीरो आप जा सकते हैं। कहां पर? 2RRR.org.au पे लिसन ऑनलाइन प्ले बटन, और इसी तरह से अपने मोबाइल पर भी। अपने मोबाइल पर एक और तरीका है आपको अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने का, वो है एक मुफ्त ऐप कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस डाउनलोड करके अपने फेवरेट ऐप स्टोर से आप अपने मोबाइल के साथ जहां भी हो सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल।

शैलेंद्र जी, जन्म हुआ 30 अगस्त 1923 को शंकर जय शंकर शैलेंद्र के नाम से रावलपिंडी में, जो अब पाकिस्तान में है, और उनका परिवार बिहार से था, मजदूरी करके गुजारा करते थे और पिता नौकरी की तलाश में रावलपिंडी गए, जहां मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लगी और वहीं पर जन्म हुआ शैलेंद्र जी का। 24 साल की उम्र में वो बॉम्बे आ गए, मटुंगा में इंडियन रेलवे में काम करने लगे। बचपन का शौक था कविता लिखना, उसे नहीं छोड़ा शैलेंद्र जी ने, और मुशायरों में अपनी कविता अपने गीत पढ़ने लगे शैलेंद्र जी, और वहाँ उन्हें खूब सफलता मिली, उनका बहुत नाम हुआ और उन्होंने अपनी कविताएं सुनानी शुरू की। एक मुशायरे में शैलेंद्र जी एक कविता पढ़ रहे थे, कविता का शीर्षक था जलता है पंजाब। राज कपूर जी उस मुशायरे में थे, शैलेंद्र जी की कविता उन्हें पसंद आई, शैलेंद्र जी को कविता खरीदने की पेशकश की, शैलेंद्र ने मना कर दिया। वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य थे, जो एक जानी मानी संस्था थी, जहां ऐसे लोग जाते थे जिन्हें अपनी कला पर घमंड होता था, ईमान, वो अपनी कविता को ऊंचा समझते थे, जो फिल्मी दुनिया के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। तो लेकिन समय बदलते, समय नहीं लगता जैसे कहते हैं, और जल्दी ही उनकी बीवी पेट से हुई और पैसे की ज़रूरत आन पड़ी शैलेंद्र जी को अपने परिवार के लिए। तो खुद शैलेंद्र जी राज साहब के पास गए। उस समय राज कपूर साहब फिल्म बरसात बना रहे थे। उन्होंने 2 गाने लिखवाए शैलेंद्र जी से और 500 रुपये की फीस दी। गाने थे पतली कमर है और बरसात में हमसे मिले तुम, और फिर उन्होंने और भी गीत लिखे। तो पेश है आपके लिए फिल्म बरसात, जिसका ये गाना अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का।

और फिर उन्होंने एक गीत लिखा जो अत्यंत ही प्रख्यात मशहूर हुआ और तलत महमूद जी ने उसको आवाज़ दी अपनी, और फिल्म थी दाग जिसमें थे दिलीप कुमार। वर्ष था 1952।

बहुत ही प्यारा गाना और तलत महमूद जी का ये गाना जो है अपने आप में एक यादगार गाना है क्योंकि तलत महमूद जी ने जब इस गाने को अदा किया और सुनाया सबको तो सब इसके अत्यंत ही प्रशंसक बन गए और सब ने बहुत ही पसंद किया इस गाने को और आज तक हम इस गाने को याद करते हैं। और अब वो गाना है फिल्म आह, राज कपूर नरगिस जी की थी ये फिल्म और इस गाने ने उस समय जब इस गाने को अदा किया और सुनाया सबको तो सब इसके अत्यंत ही प्रशंसक बन गए और सब ने बहुत ही पसंद किया इस गाने को और आज तक हम इस गाने को याद करते हैं। और अब वो गाना है

और ये गाना आप ठीक से सुन सकें, इसकी कोशिश जारी है और मैं चाहता हूँ कि ये गाना आप बिल्कुल ठीक से सुन सकें, और करते हैं कि तो कोशिश करते हैं कि ये गाने में कोई खलल ना पड़े और आप इस गाने को अत्यंत ही अपने आनंद लेके सुन सकें। और गाने के बोल है, राजा की आएगी बारात।

और फिर आई वो फिल्म जिसने धूम मचा दी फिल्मी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ने की, और ये फिल्म थी अनारकली। और इसी थीम पे आपको मालूम है आगे चलकर फिल्म जो बनी थी वो थी मुगले आजम, लेकिन मुगले आजम अपनी जगह और अनारकली अपनी जगह।

0: 2:21 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर रहूंगा। आज शैलेंद्र जी के गीत लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने का। नंबर है 02981622777, 02981622777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की।
1: Where's a great place to socialise or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetising bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
2: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
3: Hey there, are you aged between 10 and 14? Can you swim 50 metres of freestyle and breaststroke confidently? Well, if the answer is yes, then why not give water polo a try with the Ride Water Polo Club? You'll just need to pay the entry fee to Ride Aquatic Leisure Centre at 504 Victoria Road Ride. For more information, telephone Amy Jones on 0402 040 390.
4: Plug into the heart of your community at the 2RRR website. Dive into our news section for fresh local voices on everything from local news and politics to the latest buzz. Explore the program guide and discover shows for every taste. Visit 2RRR.org.au today.
0: संदेशों के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज शैलेंद्र जी के गानों के इस कार्यक्रम में। तो आपने गाने सुने फिल्म बरसात का, फिल्म दाग का, फिल्म आह का, और ये थोड़े से गम वाले गाने थे या यूं कहिए सीरियस गाने थे। लेकिन शैलेंद्र जी ने तो हर तरह के गीत लिखे हैं और उन्होंने हर हीरो के लिए गाने लिखे हैं, देवानंद साहब के लिए लिखे हैं। उनका शुरुआत चाहे राज कपूर साहब के साथ हुई थी और शंकर जयकिशन साहब थे संगीतकार उनके साथ, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अलग अलग हीरोज और अलग अलग संगीतकारों के साथ काम किया। और पेश है आपके लिए देवानंद साहब की फिल्म का ये गाना, और ये फिल्म है मुनीम जी। फिल्म मुनीम जी का ये गाना अत्यंत ही पॉपुलर है और इसके बोल हैं, जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। और 02981622777 हमारा नंबर। और इस गाने से पहले रेडियो सिलोन पर गीतमाला देने वाले, पेश करने वाले थे कौन? अमीन सयानी। उनकी है कमेंट्री।
5: इस कैसेट में जागृति फिर एक बार होगी, मगर कुछ मिनटों बाद। अभी तो आपको 1955 के गीत नंबर 9 के जरिए जीवन पथ पर सफर करना होगा, जहां आपके साथ हैं साहिर लुधियानवी के बोल, एसडी बर्मन की धुन और किशोर कुमार की आवाज। फिल्म मुनीम जी से ली हुई।

और अब जो गीत आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो अत्यंत ही पॉपुलर गीत है और ये एक फरमाइशी गाना भी है और ये है फिल्म परख से जिसमें थी साधना जी जिन्होंने बिना अपने बॉब कट के रोल किया था।

और अब आपके लिए पेश कर रहा हूं मैं भारत के उस हॉकी खिलाड़ी के बारे में कुछ बातें जिनको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था और लोग सोचते थे उनके हॉकी स्टिक में कुछ ऐसा है जो गेंद को हॉकी से दूर जाने ही नहीं देता और कई लोग तो उनकी हॉकी की छानबीन भी करना चाहते थे कि उनकी हॉकी में क्या है उसको ढूंढ कर निकाला जाए कि उनकी हॉकी से गेंद दूर होती ही नहीं थी। तो ध्यानचंद जी मैजिशियन ऑफ हॉकी के जादूगर, उनका जन्म हुआ इलाहाबाद में शारदा सिंह और सामेश्वर सिंह के घर 29 अगस्त 1905 को। पिता सेना में थे, बार बार बदली होती, पढ़ाई ठीक से नहीं होती। छठी कक्षा सिक्स स्टैंडर्ड के बाद स्कूल जाना बंद हो गया। 29 अगस्त 1922 को अपने 17वें जन्मदिन पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ध्यानचंद जी भर्ती हो गए सिपाही के तौर पर। उनकी रेजिमेंट आगे चलकर फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट बनी। वहीं हॉकी खेलनी सीखी और रेजिमेंटल गेम्स में हिस्सा लिया। इंडियन आर्मी टीम में शामिल होकर न्यूजीलैंड का दौरा किया। 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ और केवल 1 हार हुई उनकी टीम की। 1928 की ओलंपिक्स में हॉकी को शामिल किया गया। भारत में हॉकी पर खूब ध्यान दिया गया। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आजकल उत्तर प्रदेश है, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और सेंट्रल प्रोविंसेस की टीमें बनी। सेंट्रल प्रोविंसेस आजकल मध्य प्रदेश है। ध्यानचंद ने उत्तर प्रदेश की टीम को ज्वाइन किया, उसके लिए खेला। राजपूताना के खिलाफ फाइनल में 3-1 की जीत हुई। ओलंपिक टीम में ध्यानचंद को सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में चुना गया। 26 मई 1928 एम्स्टरडैम में भारत नेदरलैंड्स के बीच फाइनल हुआ। भारत ने 3-0 से जीत हासिल की। भारत के खेल पर अखबार में छपा, देयर इज नॉट अ गेम ऑफ हॉकी बट मैजिक, ध्यानचंद इज इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ हॉकी। तब से ध्यानचंद को सभी हॉकी का जादूगर पुकारने लगे। कहा जाता है कि ध्यानचंद की ड्रिबलिंग से सभी हैरान थे। नेदरलैंड्स वालों ने ध्यानचंद की हॉकी को तोड़ कर देखा क्योंकि उन्हें शक था कि हॉकी में ऐसा कोई चुंबक है जो बॉल को अपने पास रखता है और छोड़ता नहीं है। 1932 के सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के ओलंपिक्स में फाइनल में यूएसए के खिलाफ मैच 24-1 से जीता भारत ने, जो उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1936 के ओलंपिक्स में बर्लिन में फाइनल में जर्मनी के खिलाफ मैच हुआ। भारतीय टीम थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि ट्रायल्स में 4-1 से जर्मनी से हार चुकी थी। इंटरवल तक भारत ने 1 गोल किया था। दूसरे हाफ में जर्मनी ने भी 1 गोल किया, लेकिन ध्यानचंद के तूफानी खेल से उसने 4 गोल कर दिखाए। अंत में भारत 8-1 से ओलंपिक चैंपियन बना। भारत के खिलाफ पूरे ओलंपिक टूर्नामेंट में केवल जर्मनी ने ही इकलौता गोल किया था। 1936 की फिल्म ओलंपिया में ये ओलंपिक फाइनल मैच दिखाया गया। 3 ओलंपिक टूर्नामेंट्स में ध्यानचंद जी ने 12 मैच खेले और 33 गोल दागे। कथित तौर पर एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद जी के खेल कौशल से प्रभावित होकर कहा कि ध्यानचंद जी को जर्मनी की नागरिकता देते हैं और जर्मन सेना में कर्नल की पदवी देते हैं, लेकिन ध्यानचंद जी ने इनकार कर दिया। वो सेना से
ऑनरेबल मेजर के रैंक से रिटायर हुए. उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है. उनके सम्मान में राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देते हैं. 20वां नेशनल अवार्ड 2012 में ध्यानचंद जी को दिया गया. उनके बेटे अशोक ध्यानचंद ने जिसे स्वीकार किया. उनके सम्मान में 2002 से स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है. नेशनल स्टेडियम दिल्ली का नाम बदलकर 2002 में उनके सम्मान में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया. अपने पूरे करियर में ध्यानचंद जी ने 1000 से अधिक गोल किए, जो हॉकी हिस्ट्री में सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड है अब तक. वो इकलौते हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में पोस्टेज स्टैंप जारी की गई. और हम केवल आपकी फरमाइश पेश करते हैं, और इकलौता स्टेशन है जो सबकी फरमाइश पेश करता है. जैसे कि ये गाना जो फरमाइशी गाना है, और फरमाइश की है अशोक ने, और अशोक ने पसंद किया है फिल्म मधुमति का ये बेहतरीन गाना, जिसमें थे दिलीप कुमार और विजयंती माला, और गीत लिखा था किसने? शैलेंद्र जी ने.

बहुत ही प्यारा गाना है ये, और अगला गाना भी एक फरमाइशी गाना है, और उस गाने से पहले आपको एक खबर सुनाता हूँ, और ये है दैनिक ट्रिब्यून 26 अगस्त पे, और 26 अगस्त से जारी खतरनाक फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब तक कई गांव जो इसकी चपेट में आए हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। नेपाल में लैंडस्लाइड ग्लेशियर टूटने और भूचाल की मिलीजुली तबाही से पानी, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों की मार से 2000 से ज़्यादा लोगों के इसमें लापता होने के अब तक के समाचार हैं। 669 लोगों की मृत्यु के समाचार हैं, इनमें शामिल हैं 41 ऑस्ट्रेलियन, और भारतीयों की गिनती भी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी तक 128 भारतीय लापता हैं ऐसा माना गया है। इनमें से अधिकतर भारतीय मानसरोवर कैलाश की यात्रा पर थे। 228 भारतीय अभी भी लापता हैं, और भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से बचाव कर्मचारी बचाव कार्य के लिए तैयार हैं, लेकिन नेपाल सरकार ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। ऑस्ट्रेलिया से कैलाश पर्वत के लिए समीर पटेल टूर लेकर जाते हैं हर साल। इस साल उनका ग्रुप 20 अगस्त से लासा तिब्बत से अपनी यात्रा शुरू करने वाला था, लेकिन उनको वहां की बुकिंग नहीं मिली और ग्रुप की यात्रा में बदलाव करना पड़ा। इसी बदलाव ने सबकी जानें बचा ली, और समीर पटेल का मानना है कि ऐसा भगवान ने खुद ये बदलाव करके उनकी जानें बचाई। हम चाहते हैं कि जो भी इस त्रासदा से पीड़ित हैं उनकी मदद पूरी तरह से हो सके, और वो जो भी बचे हैं वो सही सलामत अपने अपने घर तक आ पाएं। और अब पेश है राज कपूर नरगिस जी की फिल्म चोरी चोरी का ये बेहतरीन गाना, जिससे लिखा है शैलेंद्र जी ने और पसंद किया है लक्ष्मी ने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो।

0: 2:47 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का. संदेशों के बाद जारी रहेगा शैलेंद्र जी के गीतों का ये कार्यक्रम महक 2RRR 88.5 FM पर, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक. और अब बहुत ही अच्छा समय है हमें फ़ोन करने का और बताने का कि आपकी फरमाइश क्या है. 02-9816-2777 हमारा नंबर, 02-9816-2777.
1: Are you or a loved one in need of an aged care facility? The St Elizabeth Aged Care Facility and Nursing Home is situated in Dean Park, just 40 minutes drive from Sydney CBD, on a beautifully landscaped and leafy 3.9 hectares. There are group therapy sessions with qualified staff, spiritual counselling, outings and celebrations for birthdays and Catholic holidays. For more information, please contact the St Elizabeth Aged Care Facility and Nursing Home at 1 Simons Road, Dean Park, 2761, or telephone 8818 8500. The St Elizabeth Aged Care Facility is a proud sponsor of 2RRR.
2: Hi, I'm Tom from Streetwork. Our team of youth workers are out in the community helping young people who face disadvantage to find their feet and turn their lives around. To find out more or to volunteer, check us out at www.streetwork.org.au.
3: Hi there. If you're looking for a weekly dose of Ireland, then tune in to 2RRR on Tuesday nights as we present the Shamrock programme with Paul the Panel Beater from 7 p.m. to 9. Followed by Tales from the High Stool with Porrick from 9 p.m. to 11. That's Tuesday nights from 7 to 11, right here on your local Sound to the World, 2RRR 88.5 FM.
4: Part of Bendigo Bank, Community Bank Homebush and North Ryde invest in community outcomes. Radio 2RRR is dedicated to working with local youth through the broadcasting medium, as well as to assist adults who are on their rehabilitation journey. Without the significant support from the Community Bank Homebush and North Ryde, this initiative simply would not be possible.
5: Support the bank that supports your community. Call, email, or visit station sponsor Community Bank Homebush and North Ryde. Part of Bendigo Bank, the better big bank.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज शैलेंद्र जी के गीतों के इस कार्यक्रम में. मदर टेरेसा, जन्म हुआ मैसिडोनिया में 26 अगस्त 1910. रोमन कैथोलिक नन का जीवन अपनाया. बचपन से ही मिशनरीज की कहानियां सुनकर बड़ी हुई. विश्वास हो गया कि उन्हें भी धर्म के लिए जीवन देना है. 18 वर्ष की आयु में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो से जुड़ गई. उसके बाद अपनी माँ और बहन को कभी नहीं मिली जीवन भर. आयरलैंड में लोरेटो अभी में अंग्रेज़ी सीखी. 1929 में दार्जिलिंग भारत आई, वहीं बंगाली सीखी, सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाया. 24 मई 1931 को नन की कस्में ली, नाम चुना टेरेसा. 14 मई 1937 को पूर्ण त्याग की कस्में ली. लोरेटो कॉन्वेंट कलकत्ता में पढ़ाया. 1944 में हेडमिस्ट्रेस बनी. 1943 की भुखमरी से बहुत प्रभावित हुई. गरीबी बीमारी के कारण गलियों में लोग मरते देखे. फिर 1946 में हिंदू मुस्लिम दंगे देखे. हर साल की तरह छुट्टियों के लिए वो रेल से कलकत्ता से दार्जिलिंग जा रही थी. अंतर मन में आवाज़ सुनाई दी, कॉन्वेंट छोड़ दो, गरीबों के बीच रहकर उनकी मदद करो. और उन्हें ये एक आदेश लगा. 1948 में गरीबों की मदद का काम शुरू किया. लोरेटो का पहरावा त्याग कर एक साधारण नीले बॉर्डर की सफेद साड़ी अपनाई. भारतीय नागरिकता अपनाई. पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रेनिंग ली, फिर कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों की राह ली, कलकत्ता की मोती झील के स्कूल से काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही बेसहारा और भूख से पीड़ित लोगों की देखरेख में लग गई। 1949 में कुछ महिलाएं साथ जुड़ गईं। पहला साल सबसे कठिन था, आमदनी नहीं थी, मांग मांग कर गुजारा करती थी। डायरी में लिखा, आज छत की तलाश में उन गरीबों का दुख समझ आया जो बेघर हैं। लोरेटो कॉन्वेंट का आराम लुभाने लगा, वापस जाओ सारे दुख दूर हो जाएंगे, उनके मन में विचार आया, लेकिन स्वेच्छा से फैसला लिया, भगवान आपके प्यार में, मैं आपकी रजा में जैसे रखोगे रहूंगी, मैंने आंख में एक भी आंसू नहीं आने दिया। ये लिखा मदर टेरेसा ने अपने उस समय के जीवन के बारे में। 7 अक्टूबर 1950, पोप ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाने शुरू करने की मंजूरी दे दी। भूखे नंगे बेघर विकलांग अंधे कोड़ी जिन्हें कोई नहीं चाहता, कोई नहीं प्यार करता, समाज जिनकी परवाह तक नहीं करता, जो बोझ समझे जाते हैं, उनके उनका ध्यान रखने के लिए। 13 महिलाओं का यह संगठन 1997 में बढ़कर 1997 में बढ़कर 4000 सिस्टर्स हो गया था। और ये यतीम, एड्स मरीजों, संसार भर में दान के काम, रिफ्यूजीज की मदद, ये सभी तरह के काम करते थे। और 1952 में कलकत्ता निगम के दिए हुए एक मंदिर में उन लोगों के लिए शरण की जगह स्थापित की जो मृत्यु के द्वार पर थे, लेकिन उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। मुसलमानों को कुरान सुनाई जाती, हिंदुओं को गंगा जल पिलाया जाता, क्रिश्चियंस को बाइबल के अंतिम राइट्स सुनाए जाते, हर कोई अपने धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागने का हकदार बनता जो भी मदर टेरेसा के ग्रुप के पास आता। जो सम्मान जीते जी नहीं मिला, मृत्यु के समय सबने पाया। जब बेघर बच्चे आने शुरू हुए 1955 में, तो उन्होंने निर्मल शिशु भवन शुरू किया, अनाथ और बेघर बच्चों को यहाँ सहारा और शिक्षा दी जाने लगी। 1965 में वेनेजुएला में उन्होंने भारत से बाहर पहला अपना मिशन शुरू किया, फिर उसके बाद रोम, टेंजेनिया, ऑस्ट्रिया, एशिया के कई देश, यूरोप के कई देश, उनमें अपने मिशन स्थापित किए। 2007 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 450 ब्रदर्स और 5000 सिस्टर्स और 600 मिशन्स थे 120 देशों में। 5 सितंबर 1997, 5 सितंबर 1997, मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने उनके लिए स्टेट फ्यूनरल बनाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने श्रद्धांजलि में कहा, एक अनोखा और अद्भुत व्यक्तित्व, ऊंचे आदर्शों के लिए जीवन भर काम किया। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेज डी किलर ने कहा कि उन्हें यूनाइटेड के नेशंस के बारे में जो पता था वो सब अब बदल गया है, क्योंकि मदर टेरेसा ही यूनाइटेड नेशंस हैं, संसार की शांति है। 1962 में पद्मश्री रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 28 अगस्त 2010 को 100वें जन्मदिन पर 5 रुपए का सिक्का निकाला गया उनके जन्मदिन पर। 1979 में जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया, तो उनके लिए बैंक्वेट रखा गया। उन्होंने पूछा बैंक्वेट का खर्च कितना है, तो उन्हें बताया गया कि $1,92,000 है, $1,92,000 है। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये बैंक्वेट, मुझे सिर्फ ये पैसे दे दो, मैं भारत के गरीबों की मदद करूंगी। ऐसी थी मदर टेरेसा। 5 सितंबर 2013 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी अनाउंस किया उनके सम्मान में। 4 सितंबर 2016 पोप फ्रांसिस ने उनको सेंट का सम्मान दिया. ये थी कुछ बातें मदर टेरेसा जी के बारे में. उम्मीद है इससे आपको कुछ उनके बारे में जानकारी मिली होगी. और आपको बता दूं, महक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं. केवल आपको फ़ोन करना है कार्यक्रम के समय और अपना नंबर देना है. हम आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और महक के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में. और महक को हमें यानी संपर्क करने के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं mahakradio@yahoo.com mahakradio@yahoo.com. और कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट करते हैं वो, और उनके सपोर्ट से कार्यक्रम आगे बढ़ता है और दूसरे नॉन इंग्लिश प्रोग्राम्स भी आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ते हैं आपकी फरमाइश से, जैसे कि सुधा ने पसंद किया है फिल्म यहूदी का ये गाना. दिलीप कुमार साहब की बेहतरीन फिल्म, मीना कुमारी जी थी इसमें. ये मेरा दीवानापन है और इस गाने को शैलेंद्र जी को नवाजा गया पहले फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड्स के साथ 1958 में. तो पेश है आपके लिए ये फरमाइशी गाना फिल्म यहूदी.

बीबीसी हिंदी में 25 अगस्त को समाचार आया कि 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित नीट पेपर लीक, अब तक तो आपको याद आ गया होगा कि याद हो गया होगा कि नीट जो एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उसका पेपर लीक हो गया था और बहुत घमासान हुआ था। तो नीट पेपर लीक के विरुद्ध प्रदर्शन समाप्त हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार के वादे के साथ के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR वापस होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा कि जिन स्टूडेंट्स पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं उन पर FIR वापस ली जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने घोषणा की है कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक शांतिपूर्वक मार्च निकालेगी वो इन मांगों को लेकर। और 20 जुलाई के कांग्रेस माफ़ कीजिए ये कॉकरोच जनता पार्टी के नीट पेपर लीक के विरुद्ध हुए सभी भारी प्रदर्शन में पैलेट गन्स भी चलाई गई थी, जिनकी बहुत चर्चा हुई थी मीडिया में कि पैलेट गन्स के कारण बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं छात्र हैं वो घायल हुए। तो पैलेट गन से के छर्रों से घायल प्रदर्शनकारी अब सामने आ रहे हैं और एक ने तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो थाना है वहाँ पे FIR लिखाने के लिए पहुँच गए और उनकी मदद के लिए पहुँच गए राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता बयान दे रहे थे कि पैलेट गन चली ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आज जिम्मेवार है आती है वो अभी तक चुप है इस बारे में। तो सरकार क्या चाहती है, हमारा ये सवाल है, मेरा ये विचार है, ये बता बला टल जाए शायद ये चाहते हैं, ये मेरा विचार है। ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऊंट किस करवट बैठता है ये अब देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं इन बारे में, कुछ नहीं, चुप्पी है उनकी, वो तो उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर चले गए हैं। पहले चरण में वो ताशकंद पहुंचे हैं और 2 दिन वहां रहने के बाद किर्गिस्तान जाएंगे। तो हैप्पी वॉयज प्रधानमंत्री जी, मजे लीजिए वहां और हम यहां आपकी फरमाइश देकर मजे लेते हैं। और ये अगला गाना जो है इसको 1959 में फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड दिया गया था। तो 1958 में ये मेरा दीवानापन है और 1959 में सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। और यहाँ शायद महक में भी यही हाल है कि होशियारी नहीं है केवल सेवा है।

थी रुकावट के लिए। और अब आपको ले चलते हैं एक समाचार की तरफ। बीबीसी हिंदी 28 अगस्त। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिगड़ती हालत के खिलाफ कई जगहों पर विद्यार्थी सड़कों पर आ गए हैं। कहीं पर स्कूलों में बैठने के लिए बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, कहीं पंखे नहीं हैं, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं टीचर ही नहीं है, तो पढ़ाई क्या होगी? यानी स्कूल तो है, टीचर नहीं है। लखनऊ, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, ये सब उत्तर प्रदेश के नगर हैं जहां ऐसा हो रहा है। लेकिन ये क्या, YouTube और इंटरनेट पर इस मामले पर लिखने वालों और बोलने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, यानी उन्हें हिरासत में लिया गया है। और मतलब मेरी समझ में जो आ रहा है वो यही है कि चुप रहो, नहीं तो ये समझ गए आप। लेकिन हम आपके बोलने से खुश होते हैं, आपकी फरमाइश सुनकर हमें अत्यंत ही खुशी होती है। तो अपनी फरमाइश भेजते रहिए महक 2RRR 88.5 FM पर। यहाँ नंबर है 02-9816-2777, 02-9816-2777। और ईमेल भेज सकते हैं mahakradio@yahoo.com, MAHAKRADIO, mahakradio@yahoo.com। और आप जानते ही हैं कि आप महक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं, आप उसमें मेंबर बन सकते हैं और मेंबर बनकर अपनी राय दे सकते हैं महक में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमें बहुत इंतज़ार रहता है आपके सुझावों का, और अपनी फरमाइश भी वहीं पर दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, कार्यक्रम के समय फ़ोन कीजिए और अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आप अपने आपका साथ हो जाएगा महक व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप जो भी सलाह देना चाहें दे सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा, आप जानते हैं गुरमीत राम रहीम, जी हाँ, ये वही नाम है जिसको बलात्कार के केस में 20 साल की सज़ा हुई है, ये वही नाम है जिसके खिलाफ एक मर्डर ट्रायल हुआ था। लेकिन ये क्या, 20 साल की जेल काट रहे 2017 से, यानी अभी 9 साल हुए हैं, उनको 17th टाइम फरलो दिए जा रही है। ये क्या हो रहा है, यानी हर साल दो बार जेल से बाहर कुछ हफ्तों के लिए मज़े करते हैं फिर वापस जेल में, तो यानी हर साल दो बार जेल से छुट्टी उन्हें कैसे मिल जाती है, और इस बार तो 21 दिन के लिए, 3 हफ्तों के लिए। जी हाँ, यह है भारत की स्थिति। और हमें बताया जाता है कि हर तरफ विकास हो रहा है, हर तरफ सब अच्छा ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बिजली नहीं है, टीचर नहीं है, और बैठने के लिए वहाँ पर कुर्सियाँ नहीं है, मेज नहीं है, यानी बेंच नहीं है और डेस्क नहीं है, लेकिन विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम यहाँ सबकी फरमाइश तुरंत ही देते हैं, जैसे कि ये अगला गाना जिसे फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड से नवाजा गया शैलेंद्र जी को, और ये हुआ 1968 में, रफ़ी साहब ने दी इस बेहतरीन गाने को आवाज़, और ये है मैं गाऊं तुम सो जाओ। बहुत ही प्यारा गाना, रफ़ी साहब की आवाज़ तो है ही, शैलेंद्र साहब की कलम है और उसी कलम का कमाल है।

और खेल की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिकेट का मैच हुआ है इस बीते सप्ताह, भारत श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट और ड्रॉ रहा। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर 9 विकेट पर डिक्लेयर कर दिया, बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। जवाब में श्रीलंका पहली पारी में 290 पर ऑल आउट हो गई, वो भी बड़ी बुरी खबर थी श्रीलंका के लिए। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 429 रन बनाए 9 विकेट पर और डिक्लेयर कर दिया और मैच का समय भी खत्म हो गया और मैच ड्रॉ रहा। सीरीज भारत के नाम रही 1-0 पर। और यहाँ ये कार्यक्रम आप फरमाइश करने वालों के लिए ही है और उन आपकी फरमाइश देकर हमें अत्यंत ही खुशी होती है और हमें अत्यंत ही खुशी होगी अगर आप महक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करें, अपनी सलाह अपनी बात हम तक पहुंचा सके, बहुत ही आसानी से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सके। और इसके लिए आपको केवल यहाँ महक कार्यक्रम के समय फ़ोन करना है 02981627 पे, 02981627, और अपना मोबाइल देना है, हम महक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आप अपनी राय अपनी फरमाइश अपना जो भी कहना चाहे महक के कार्यक्रम के बारे में आप कह सकते हैं। और आप ईमेल भी भेज सकते हैं mahakradio@yahoo.com mahakradio@yahoo.com और वहां भी आप अपनी फ़ोन नंबर दे सकते हैं और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट

ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हम बहुत ही आभारी हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं और कार्यक्रम देने का हमें मौका मिलता है यहाँ 2RRR पर, और आपके लिए हम कार्यक्रम पेश कर सकते हैं क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है कि आपकी फरमाइश आप तक पहुँचाई जाए, जैसे कि ये अगला गाना, ये एक फरमाइशी गाना है और फिल्म है दूर गगन की छाँव में। किशोर कुमार जी की बेहतरीन आवाज़, किशोर कुमार जी ही थे इस फिल्म के बेहतरीन हीरो, और गीत लिखा है शैलेंद्र साहब ने।

0: और अब समय है संदेशों का, कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद जारी रहेगा शैलेंद्र जी के लिखे हुए गानों का ये कार्यक्रम महक 2RRR 88.5 FM पर, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूँ मैं सुखदेव जसवाल। और
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: Want to know what's happening in the city of Ryde? Just subscribe to their newsletter and you'll be up to date in no time. Email cityofryde@ryde.nsw.gov.au or phone 9952 8222. And for our Hunters Hill Council, email info@huntershill.nsw.gov.au or phone 9879 9400.
2: Turn up 2RRR everywhere. Stay tuned wherever you go by downloading the free Community Radio Plus app. Set alerts for your favourite shows so you never miss a moment. Download now and keep 2RRR in your pocket. Your local sound to the world.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर, अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूँ मैं सुखदेव जसवाल। और अगला गाना जो है वो है फिल्म मेरा नाम जोकर से, और ये अपने अंतिम फिल्मों के दौर में लिखा था शैलेंद्र जी ने एक बार फिर राज कपूर साहब की फिल्म के लिए। और इसको पसंद किया है शांति ने।

बहुत ही प्यारा गाना। और अब अगला गाना जो है वो शायद शैलेंद्र जी के लिखे हुए गानों में से एक अत्यंत ही यादगार गाना है, क्योंकि इसके बोल ही कुछ ऐसे हैं और वहीदा रहमान जी ने जो पर्दे पर इसे निभाया वो भी अत्यंत ही निराला था। और फिल्म थी कागज़ के फूल, और इसको पसंद किया है सुधा ने। और आप भी अपनी पसंद हम तक पहुंचा सकते हैं। शैलेंद्र का कोई गीत सुनना चाहें तो महक 2RRR 88.5 FM पर बहुत ही आसान है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02981622777।

आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ताकि वो भी आपकी पसंद को अपनी पसंद

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही भावना थी शिवराम राजगुरु के दिल में, जिनका जन्म हुआ 24 अगस्त 1908 को। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसे अब महाराष्ट्र कहते हैं, उसके खेड़ गांव में, जिले में, 24 अगस्त 1908 को। खेड़ भीमा नदी के किनारे है, पुणे के पास। जब वो केवल 6 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी प्राइमरी की शिक्षा खेड़ में हुई, फिर पुणे में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में हुई। छोटी उम्र में ही शिवराम राजगुरु ने सेवा दल का हिस्सा बनकर देश की सेवा में लग गए। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, जो कि किसी भी तरीके से भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराना चाहती थी। 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी का हिस्सा बने। अपने काम के लिए धन जुटाने के लिए क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार की ट्रेन लूटी। इस निडर काम में उनके साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। उसके बाद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव थापर के साथ मिले और उनके साथी बने। तीनों ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी। उन्होंने ऐसा पुलिस द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस में भाग ले रहे लाला लाजपत राय जी पर लाठी चार्ज के बदला लेने के लिए किया। सॉन्डर्स की हत्या के 2 सप्ताह बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। 23 मार्च 1931 को 22 वर्ष की उम्र में राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। आज़ादी के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी याद में हुतम्मा राजगुरु स्मारक समिति हर वर्ष राजगुरु वाड़ा उनके घर पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराती है। खेड़ का नाम अब बदल कर उनकी याद में राजगुरु नगर रख दिया गया है। दिल्ली में वसुंधरा एनक्लेव में उनकी याद में शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन स्थापित किया गया है। शत शत नमन शिवराम राजगुरु को।

शमी कपूर जी की फिल्म आई दिल तेरा दीवाना, जिसने उनको उस समय से लेकर अंत तक टॉप हीरो बनाए रखा और लोगों ने याद किया। आशा पारेख जी ने अब डेब्यू किया इस फिल्म में और टॉप हीरोइन बन गई और टॉप गाना बन गया, लिखा हुआ किसका, शैलेंद्र जी का। और ये है दिल तेरा दीवाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग, माफ कीजिए इस फिल्म में माला सिन्हा जी थी। तो आइए चले दिल तेरा दीवाना।

बातें हमारी जन्मभूमि की कुछ इधर की और कुछ उधर की, और शुरू करते हैं कि अमरावती अस्पताल महाराष्ट्र NICU जो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे जो कुछ ही दिनों के होते हैं, वो वेंटिलेटर पर थे और एक वेंटिलेटर फट गया, उससे तीन जो नए जन्मे बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई और 6 गंभीर हालत में पाए गए। कर्नाटक और कई भारतीय और अन्य देशवासी H1B वीज़ा पर US जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। अब ट्रंप सरकार H1B वीज़ा लेने के लिए $1,00,000 मांग रही है। अब क्या होगा? और कंगना रनौत जो अपने को दूसरों के मुकाबले बहुत बड़ी मानती है, अपने आलोचकों जिनमें शामिल हैं आशुतोष राणा, सोनू सूद, तापसी पन्नू, उनको ज्ञान दिया कि आए दिन जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है, मेरा उनके संदेश है कि अगर आपने मेरे बराबर 1% सफलता भी हासिल की तो मैं आपका कोई ज्ञान नहीं सुनूंगी। यानी अगर आप मेरे बराबर 1% भी आए तब शायद सुन लूं, लेकिन मुश्किल है। कर्नाटक के मांड्या जिले की भीख मांगने वाली एक महिला की मृत्यु के बाद उसके घर से 23 अगस्त 2026 को उसके किराए के घर से 30,00,000 रुपए कैश मिला। और गुजरात प्रदेश में दशकों से, डेकेड्स से शराब पर पाबंदी है, आप वहाँ शराब नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी हर साल शराब से मरने वालों की गिनती कम नहीं बढ़ती जा रही है। इसी हफ्ते जहरीली शराब से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं कहता हूँ कि दिखावे की राजनीति छोड़ो यार, कुछ अच्छी राजनीति करो। लेकिन हम आपकी फरमाइश के साथ कोई राजनीति नहीं करते, और आपकी फरमाइश जैसे आप चाहते हैं वैसे ही पेश करते हैं। और ये है मनोज कुमार जी की बेहतरीन फिल्म मारा सिन्हा जी के साथ, उसका ये बेहतरीन फरमाइशी गाना जिसको पसंद किया है माही ने।

और अब जो बात करने की है वो है हमारी कर्म भूमि की, बातें हमारी कर्म भूमि की। भारतीय मूल के प्रॉपर्टी डीलर डेवलपर बाटला ग्रुप के वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से अब दूसरे प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो हैं उन पर नज़रें टिकी हैं लोगों की, कहीं उनका ये हाल तो नहीं होगा, लेकिन इसका असर उन पर तो नहीं पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। और ऑस्ट्रेलियन राजनीति क्या बड़ा मोड़ ले रही है या अस्थायी रूप से रास्ते में बल आ गया है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सीक्रेट हार्बर इलेक्ट्रेट में लंबे समय से टिके हुए लेबर वोट को हरा कर वन नेशन के लूक हर्डी गम ने अपनी झोली में डाल ली है वो सीट, यानी अब सीक्रेट हार्बर जो है वन नेशन की सीट हो गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स खुल रहे हैं जगह जगह ऑस्ट्रेलिया में आजकल, और ज़ोर शोर से चल रहा है उन पर काम। नतीजा, ग्रीन एनर्जी और फॉसिल एनर्जी के टारगेट जो पूरे होने के करीब पहुंच गए थे अब शायद बिखर रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल डाटा सेंटर बहुत एनर्जी के भूखे हैं। नए अनुभवों के अनुसार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाटा सेंटर्स न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के सारे घरों की टोटल बिजली की खपत जितनी होती है उससे भी ज़्यादा बिजली खपत करते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। सिडनी में और पूरे ऑस्ट्रेलिया में नए घर बनाने के लिए मुहिम चली हुई है ताकि लोगों को घर खरीदने में आसानी हो, लेकिन कुछ सिडनी काउंसिल साथ दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही हैं। वुलाहारा और मॉसमैन काउंसिल नहीं दे रही हैं, वो नहीं चाहती कि उनके यहाँ ज़्यादा मकान बने। दूसरी ओर जॉर्जेस रिवर काउंसिल ने कहा है कि वो 800 की बजाय 1345 नए घर बनाने को तैयार है, और हम आपकी फरमाइश देने के लिए बहुत ही तैयार हैं। और अगले सप्ताह कला की दुनिया से ऋषि कपूर, शक्ति कपूर, साधना जी, स्वर्गीय सतिंदर सरताज जो आजकल बहुत मशहूर हो रहे हैं, और केएन सिंह हमारे पुराने जो फिल्मी दुनिया के जाने माने विलन थे, रजिंदर सिंह बेदी जिन्होंने एक चादर मैली सी लिखी थी और दस्तक फिल्म बनाई थी, उनके हैं जन्मदिन। और जो मशहूर लोग हैं उनमें हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे, स्वामी प्रभुपाद जो के हरे कृष्णा के संचालक थे, सोनम वांगचुक जो के लद्दाख के एक एक्टिविस्ट हैं, अमृता प्रीतम जी बहुत ही अच्छी लेखिका रही हैं, और क्रिकेटर जावगल श्री नाथ जी के जन्मदिन हैं। और 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा मैंने बताया डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है 5 सितंबर को, और उसे टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और अब कार्यक्रम भी समाप्त करने का समय आ गया है, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, और अंतिम गाना जो आपके लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ उससे पहले एक शमी कपूर जी की फिल्म का गाना लिखा था प्रोफेसर का, उसकी कुछ अंश आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ।

0: मन चाहे सपने।
1: और अब कार्यक्रम का अंतिम गाना पेश है आपके लिए, और अगले सप्ताह तक के लिए मुझे सुखदेव जसवाल को आज्ञा दीजिए। और ये अंतिम गाना है, देवानंद साहब की फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, उसके लिए लिखा था शैलेंद्र जी ने ये गाना, और ये गाना आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।